नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है।

जिसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
3: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए

0: नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
1: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है, बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी के निशान से ऊपर बह रही है, हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान।

0: किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित। देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त। विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोलंबो में ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. We have more from a correspondent.
3: Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strength with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agent for countries' economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Mr. Modi urged the officer trainees to work towards making India a more attractive global tourism destination by showcasing its civilizational, cultural and geographical strength. He suggested leveraging the Bharat Kujani Know India quiz to generate greater interest in India among young people across the world and encourage the use of AI and gaming to make such initiatives more engaging. The group comprised 50 IFS officer trainees who come from different states and union territories across the country. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center MAC platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization.

पर घट पे भोर भय पनघट पे, इतना सुंदर जो गाना है हमने सुबह सुबह सुना। वैसे तो 8:46 होने को है, और लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो गाना है, सबसे पहले बता दूँ कि ये जो गाना है वो राग भैरवी पर आधारित है। वैसे तो हम जब प्रोग्राम का एंडिंग करते हैं तो भैरवी राग के साथ करते हैं, लेकिन भैरवी राग है वो कभी भी गाया जा सकता है। उसमें रे ग ध नी कोमल आता है, यानी कि फ्लैट है। सा रे ग रे सा ध नी सा तो रे ग ध नी, चारों कोमल है। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त, आपकी आरजे अवनी भट्ट, आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में, सुनहरी सुबह में। आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अवनी का आप सभी को नमस्कार, क्योंकि आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

नमस्कार आदाब, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी के मैसेजेस हमें आ रहे हैं, जैसे कि फिरोजगन पुरिया जी हमारे साथ है, वैदे ही है मेलोडियस मॉर्निंग वैदे ही, विजेंद्र काटोल जी और हमें मैसेज किया है रविंद्र खुड़ापे जी रविंद्र जी, और फिर मैसेज किए हैं प्राची शिंदे ने, प्रकाश शिंदे जी ने। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी है, पंकज मोहत जी है, विश्वास चांदोरकर है, डॉक्टर अंजू जी है, दीपा पालकर है, अजय सखारे जी है इंदौर से। आप सभी को, राकेश माथुर जी भी है हमारे साथ, आप सभी को अवनी का प्यार भरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और हाँ, हमारा योगा तो होगा ही 9 बजे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। कहते हैं कि कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि ये जो गाना है भोर भय पनघट, तो वो राग भैरवी पे है। कोई भी राग होता है तो कोई आप ऐसे ही गा देंगे कि सा सारे करे साधनी सा, लेकिन वो सीधा सीधा गाएंगे, उसमें अगर भाव नहीं होगा तो वो राग कौन सा है। राग जो होता है उसके भी भाव होते हैं कि काफ़ी कहाँ पे गाना है आपको, आसावरी कहाँ पे गाना है, भैरवी कहाँ पे गाना है, यमन कहाँ पे गाना है। तो कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, और अपने भावों की जो क्रिया है, रेखा, रंग, ध्वनि, साउंड है, शब्द है, इसके द्वारा इस प्रकार की अभिव्यक्ति करना, उसे देखना या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न होते हैं। हम जब भी बोलते हैं तो कौन कौन से, मतलब कैसे भाव में बोलेगा उसे हमें पता चल जाता है। तो वो जो है वो कला है। आह से उपजा होगा ज्ञान, आह से उपजा होगा ज्ञान और वही होगी कविता अनजान। मैथिली शरण गुप्त जी ने ये जो मैंने आपको लाइन सुनाई वो लिखी है, तो एकदम सही है कि आह से उपजा होगा ज्ञान और वही होगी कविता अनजान। वाह वाह, एक बहुत ही प्यारा सा गाना। अब हम राग के बारे में ही बात कर रहे थे, और वैसे बम्बई में थोड़ी बहुत तो बारिश है, और दूसरी जगह पे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी हम बारिश जो है वो भेज रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यारा सा गाना है लता जी की आवाज़ में। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

0: तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
1: है?
0: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
1: है।
0: गर्मी के निखार है?
1: है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?

9:01 हो चुके हैं और जब भी हम ये शो में मिलते हैं तो हम ऑब्वियसली बात करते हैं कि आज आपने क्या किया है ना. तो आपके मैसेजेस तो मुझे आ ही रहे हैं, जैसे कि फिरोज़ सिगनपुरिया सर जो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने आज क्या किया, प्राणायाम किए, वेरी गुड. दीपा जी के भी मैसेज आ रहे हैं. लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो मुझे जानकारी देनी है वो बता दूँ कि सीज़न ऐसे चल रही है ना कि आजकल मतलब कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि अरे सिर दर्द हो रहा है या तो किसी को माइग्रेन है. पहले तो पता भी नहीं था कि माइग्रेन क्या होता था, लेकिन आज सबको पता होता है. या तो फिर कभी कभी हमें होता है कि क्या हमें ये मालूम है इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है माइग्रेन. अभी जैसे योगा तो आप करते ही है, कभी कभी बारिश में ऐसा होता है कि वॉकिंग नहीं होता. मेन तो वॉकिंग है, वॉकिंग अगर आप करते हो तो सब चीज़ उसमें भी आ जाती है. फिर हम प्राणायाम पर जोर देते हैं. प्राणायाम जो है योगा है वो हम करते हैं. प्राणायाम में माइग्रेन या तो आपको सर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट प्राणायाम है कपालभाति. पद्मासन में बैठ के या तो आप ऐसे ही सिंपल आसन में बैठ के, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, गहरी सांस खींचे और फिर जल्दी जल्दी सांस छोड़े और पेट को अंदर करें. ऐसे करके कर सकते हैं, मैं यहाँ से तो आपको बता नहीं सकती, लेकिन कपालभाति जो है वो बेस्ट प्राणायाम है. फिर दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम. ये भी आपको, क्योंकि आप सांस लेते हो एक बाएं छिद्र से फिर दाएं पे छोड़ते हो, दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं छिद्र को बंद कर ले और बाएं छिद्र से भीतर की ओर खींचे, वैसे ही मतलब वाइस वर्सा आपको करना है. तो उससे भी गैस नहीं होगा आपको और जो ऑक्सीजन है वो कोने कोने में पहुंचता है. अनुलोम विलोम बेस्ट है. वैसे माइग्रेन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अनुलोम विलोम जिनको चश्मा है उनके लिए भी बेस्ट है. और मेरे पास तो एक ऐसा एग्जांपल भी आया था जिनके चश्मा के नंबर जो है वो अनुलोम विलोम से उतर गए. तीसरा बेस्ट प्राणायाम इसके लिए है माइग्रेन के लिए भ्रामरी. भ्रामरी आप पहले भी कर सकते हैं या तो आप योगा कर लो उसके बाद लास्ट में कर सकते हो. दोनों कानों को अंगूठों से बंद करके फिर अंदर हम आवाज़ करते हैं, बाहर ओम या नोम तुम जो भी है वो नहीं करते. ऐसे करके जब तक आप सांस खींच सकते हैं आप ये प्राणायाम कर सकते हैं. प्रक्रिया के दौरान जो मुंह है वो हमें बंद रखना है और श्वास की सारी क्रिया जो है वो हमें नाक से ही करनी है. ये भी आप करोगे तो आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर. मतलब मुझे आप याद कर लेना और इतने प्राणायाम कर लेना. लेकिन अगर मॉर्निंग में करते हैं तो सबसे बेस्ट है, या तो फिर आपको जब टाइम मिले बट खाना खाने के एक घंटे के बाद या उसके एक घंटे पहले. फिर बाद में एक गाना सुनते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि आज आपने क्या किया. सो जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल.

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

नमस्ते, जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उनको बता दूं कि प्रोग्राम चल रहा है मस्त मुंबई और मैं हूं आपकी होस्टिंग दोस्त आरजे अवनी। अभी जैसे हमने बात की योगा के बारे में, हम सबके मैसेजेस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम दूसरे को आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, हम सबको पता चले। जैसे कि मैं जब भी योगा करती हूँ, आज मॉर्निंग में तो नहीं कर पाई लेकिन शाम को करेंगे, एक ऐसा प्लान रहता है। या तो फिर ऐसे हमने किया है हमारे ग्रुप में, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे 6 दिन का एक प्लान रहता है। वैसे तो 7 दिन करना चाहिए, एक दिन हम छुट्टी करते हैं संडे को, तो 6 दिन में हम पीठ की एक्सरसाइज करते हैं, पैर की एक्सरसाइज करते हैं, पेट की एक्सरसाइज करते हैं और मेन जो प्राणायाम है 5 वो तो करते ही है। तो बीच बीच में हम प्राणायाम करते हैं, एक कुछ ऐसी हार्ड एक्सरसाइज कर ली तो फिर बैठ के एक प्राणायाम कर लिया, फिर वापस कुछ एक्सरसाइज कर ली, फिर प्राणायाम किया। तो अभी हमें शिरोडकर मैम, दीपाली शिरोडकर बता रही है कि हमने आज योगा किया है और उन्होंने क्या किया है। अच्छा, मैंने आज आधा घंटा वॉक किया और स्टेज ऊपर नीचे किए। हाँ, तो ये जो है आप बता रहे हैं वो भी हम करते हैं कि वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, स्टेज पे हम नहीं जाते बट ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और नाश्ते में पोहा खाया है, मैंने भी आज पोहा खाया, नट्स डाल के खाए, वेरी नाइस। सबके मैसेजेस तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी लेकिन और भी एक सर हमें बता रहे हैं, राजेंद्र बापे जी कि योगा टीचर को नमस्कार, मैं रोज़ योगा करता हूँ। कहते हैं कि सब कुछ खरीद सकते हैं बल्कि हेल्थ नहीं खरीद सकते। मैं भी ऐसी जानकारी लोगों को देता रहता हूँ। हाँ, बट जानकारी वहाँ पे ही दे दीजिएगा कि जहाँ पे जो लोग वो जानकारी के योग्य, मतलब किसी को भी वैसे तो दे सकते हैं लेकिन खैर देखना चाहिए कि सामने वाला एक्सेप्ट करता है कि नहीं। दीपा जी बता रही है कि आज हमने वॉल पुशअप किए, बाद में 20 सेकेंड एक एक पैर पर विदाउट सपोर्ट खड़े रहे 30 मिनट वॉक किया। दिस इज़ वेरी नाइस, मतलब एक पैर पे हमें अपना बैलेंस रखना है। और ये जो हम वृक्षासन करते हैं उसमें भी ऐसे प्राणायाम, सॉरी ऐसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। दूसरे मैसेजेस भी आए हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा हाँ, ये मैसेज भी अच्छा है, प्रकाश जी बता रहे हैं कि गर्मी जो है वो बढ़ रही है, बारिश तो आ रही है लेकिन कभी बारिश तो कभी गर्मी, और इसमें मलेरिया जो है

है वो बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं भी आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूँगी कि ऐसे टाइम पे हम खाए क्या, है ना। लेकिन बहुत बात हो चुकी, तो मैं एक गाना सुनाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मलेरिया से हम दूर कैसे रहे। बने रहिए, ट्यून तो आपने किया ही है, FM रेनबो आप सुन रहे हैं। तो मैं हूँ आपकी होस्टिन दोस्त RJ अवनी, और एक गाना आपको मस्त सुनाती हूँ और उसके बाद हम कुछ मस्त बातें करते हैं।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: मस्त मुंबई प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं और वैसे तो हमें बहुत सारी बातें करनी है लेकिन हम अभी योगा पे ही अटके हुए हैं लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब भी देना चाहिए मुझे फिरोज जी ने बताया कि क्या सूर्य नमस्कार है ऐसा सुना है कि शाम को नहीं करना चाहिए सुबह ही करना चाहिए वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है आप शाम को भी कर सकते हो सुबह क्यों करते हैं क्योंकि हम उठ के खाली पेट नमस्कार करते हैं उसमें सब आसन आ जाते हैं हम 12 सूर्य नमस्कार करते हैं और एक ही सूर्य नमस्कार करेंगे उसमें भी मतलब काफ़ी सारे ऑलमोस्ट जो आसन है वो उसमें आ जाते हैं तो उन सब आसनों का फ़ायदा होता है शाम तक क्या होता है हम पेट में कुछ ना कुछ तो डालते ही रहते हैं तो जो फ़ायदा सुबह मिलता है वो शाम को नहीं मिलता है लेकिन हाँ आपको टाइम ही नहीं मिला है वक्त नहीं मिला तो कुछ कोई बात नहीं आप शाम को भी कर सकते हो लेकिन एक बात ध्यान रखने का कि ऐसी जो योगा एक्सरसाइज है वो आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद करो अगर आपने 2 बजे खाना खाया है तो आप 4 बजे 5 बजे करो 6 बजे करो लेकिन उसके पहले कुछ खाओ मत है ना और ये मुझे कौन बता रहा है बहुत अच्छा मैसेज है हाँ आपने बताया कि आई एम डूइंग प्राणायाम नाउ एंड दूसरे मैसेजेस भी आ रहे हैं सरोज पाटिल जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी हैं शुभदा जी है हमारे साथ अमर पाटिल है मंगेश जोशी जी हैं आप सभी को अवनी का नमस्कार गुड मॉर्निंग सरोज पाटिल जी बता रही है कि मैंने मतलब आई डिड वेट ट्रेनिंग एंड सूर्य नमस्कार ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार अगर हो सकते हैं तो प्लीज़ करने ही चाहिए एंड वैदेही ने भी बहुत अच्छा मैसेज किया है मैं एक मिनट आपको बताती हूँ कि माइल एक्सरसाइज मैं आजकल करती हूँ यस वैदे ही ने बताया बींग अ सीनियर माई ओपिनियन बहुत आजकल बहुत मतलब एक कहते हैं ना नया नया नाम भी आ जाता है एक्सरसाइज तो वो ही होती है लेकिन हम जो करते हैं उसमें हाँ कि ये पुशअप है ये एक्सरसाइज है बट पहले भी दंड बैठक भी करते थे ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनके हमने आज नए नाम दिए हैं वो तो है मॉर्निंग वॉक है सॉक इन सनशाइन है माइल एक्सरसाइज है योगा कंबाइन है लेग एक्सरसाइज है एंटायर बॉडी रिजुवेनेशन तो ये तो होगा ही जब आप एक्सरसाइज करें तो और कैसा होता है बहुत अच्छा फील होता है ऐसा नहीं होगा कि आप ये सब करके आए और फिर घर पर आके बैठ गए कि अरे मैं तो थक गई ऐसा नहीं होगा फिर आपकी जो गाड़ी है वो दौड़ेगी मस्त और फिर आपको मेडिटेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं हाँ मेन बात तो मैं भूल गई कि आप मिलेट्स खाइए ये सीजन में तो खास क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जो डॉक्टर खादर वाली है थे मतलब है अभी जिनको मैं मिली थी खास करके कोरोना टाइम पे तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई दवाई नहीं ली कुछ भी नहीं किया लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ क्यों क्योंकि वो मिलेट्स खाते थे जिसमें जो आप राइस नहीं खाते आप रोटी मतलब गेन नहीं करते यूज़ नहीं करते फ्लोर का तो आप में जो ग्लूकोज है ग्लूटेन फ्री सब रहेगा ग्लूकोज नहीं रहेगा तो कोई वायरल बैक्टीरिया की ताकत नहीं है कि वो आप पे अटैक कर सके तो आप भी ट्राई कीजिएगा अभी

मलेरिया चल रहा है, बट आई एम श्योर कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, आप ग्लूकोज कम खाते हैं यानी कि ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे रहेंगे। और खादर वाली जिनको पद्मश्री मिला था 2021 में शायद, मैं आपको बताती हूँ, बट वो ही इज़ राइट नाउ 66 ईयर्स ओल्ड और नारियल के झाड़ पर चढ़ जाते हैं, तो आप भी चढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने एज के हैं वो इतना मायने नहीं रखता अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। अभी मुझे दूसरी भी बातें करनी है क्योंकि 9:35 होने को है, लेकिन एक गाना हम और सुनते हैं और फिर बाद में आज की बात करते हैं।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की

0: मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

आज है 25 अगस्त और मस्त मुंबई कार्यक्रम में आज की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1997 में भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था। हम वैसे तो बहुत खुश हैं क्योंकि हम ओलंपिक्स भी अच्छे से खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट तो ऑब्वियसली खेल रहे हैं, लेकिन 1957 में भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था, ये भी याद रखें। 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था, वो भी आज ही के दिन। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के महान तेज स्पिनर शेन वॉन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट आज ही के दिन पूरे किए थे। हमारा कैसा है, इंडियंस हम सभी को प्यार करते हैं, यानी कि शेन वॉन हो और सामने सचिन तेंदुलकर हो तो हम देखते हैं कि अरे कैसे खेलेंगे, है ना। आपको भी ऐसा लगता होगा जब हम ये क्रिकेट देखते थे और एक मज़ा आता था कि हाँ भाई आज तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है सामने और शेन वॉन है, सचिन तेंदुलकर है, तो बात ही कुछ और है। वैसे तो बहुत सारी बातें करनी, एक और गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि अवनी के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: Akashwadi FM Rainbow.
2: नमस्कार, अभी के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय विदेशीय सेवा IFS के 2025 के बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया। समाचार में आगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना के तहत कल दूसरी किस्त जारी की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6,36,036 किसानों के बैंक खातों में 5,086 करोड़ रुपए जमा किए। समाचार के अंत में, कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक को 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। अभी के मुख्य समाचार यहाँ पर समाप्त हुए। धन्यवाद।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

वैसे आज की बात करूं तो आज है 25 अगस्त और हमारा नमस्ते भारत जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है, लेकिन आज की बात करूं

तो आज 2012 में चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का आज निधन हुआ था। हम सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 2018 को भारत के शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तुरंत जकार्ता एशियाई खेलों में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, वो भी आज के दिन। और आज है जन्मदिन राजीव कपूर जी का, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, राम तेरी गंगा मैली के प्रमुख कलाकार, उनको हम याद करते हैं। और उन्हीं का अभी तो हमने एक गाना सुना था, लेकिन ये गाना भी बहुत खूबसूरत है। ये गाना हम लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुनना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ FM रेनबो के संग।

सुन साहिबा सुन, आपने ये गाना सुना लता जी की आवाज़ में, राम तेरी गंगा मैली फिल्म का, रविंद्र जैन जी का कंपोज किया हुआ ये गाना और उन्हीं का लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं इस फिल्म के। अभी आजकल ऐसा होता है कि बहुत कम होता है खास करके कि एक ही फिल्म के गाने जो है सब गाने सुपरहिट हो, और ये जो फिल्म थी उसके भी सब गाने सुपरहिट है। तो हम तो बात कर रहे थे आज की कि 25 अगस्त को क्या क्या हुआ, आज का दिन विशेष है। जन्मदिन के बारे में मैं आपको बताया कि राजीव कपूर, जिनका हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राम तेरी गंगा मैली के प्रमुख कलाकार, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि विजेता पंडित, जो कि भारतीय पार्श्व गायिका और लव स्टोरी जो फिल्म आई थी उसकी फेमस, मतलब अभी ये फिल्म आप उस टाइम की सुपर हिट फिल्म, और ये उसके जो गाने हैं वो हम आज भी याद करते हैं। तो ऐसा ही एक जो गाना है हम प्ले करना चाहेंगे और हम उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में

0: लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू। शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जैसे मैंने आपको बताया कि आज है 25 अगस्त और राजीव कपूर और विजेता पंडित का जन्मदिन है। आज जन्मदिन है विनेश फोगट का भी, भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान रेसलर जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। और बता दूं कि ये तो आपके बहुत फेवरेट हैं, शॉन कैनरी जो कि हॉलीवुड के दिग्गज स्कॉटिश अभिनेता जिन्हें पर्दे पर जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। तो आज इन सभी महानुभावों का जन्मदिन है, हम उन्हें याद करते हैं, कुछ जो है उनको हम जन्मदिन की बधाइयाँ भी देते हैं। और आप बहुत ही प्यारे से गाने सुन रहे हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल।

आज है 25 अगस्त और हम बात कर रहे हैं आज अहमद फराज साहब को भी हम याद कर रहे हैं। प्रसिद्ध उर्दू शायर अहमद फराज जी की आज पुण्यतिथि है। वे आधुनिक उर्दू शायरी के ऐसे हस्ताक्षर थे जिन्होंने प्रेम और विद्रोह को बेहद खूबसूरती से अपनी नज़मों में पिरोया।

उनकी शायरी की सबसे बड़ी खासियत उनकी भाषा को सादगी भरा अंदाज देना था। 25 अगस्त 2008 को इस्लामाबाद में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जो गजलें हैं वो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। हम उनको याद करते हैं और एक गज़ल जो है वो उनको डेडिकेट करना चाहेंगे। हालांकि ये उनकी लिखी हुई नहीं है, बट बहुत ही प्यारी सी गज़ल है जो बर्फी फिल्म की है। अहमद फराज साहब को हम याद करते हैं FM रेनबो, और हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

10:46 माफ कीजिएगा हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी क्या चल रहा है। 25 अगस्त से राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा यानी कि नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट। भारत में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है। 2026 में डिजिटल इंडिया पहल के तहत के नेटवर्क को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित किया गया है और जिससे दान में मिले कॉर्निया को सही मरीज तक बहुत तेजी से पहुंचाया जा सके। तो ये जो पखवाड़ा है आप याद रखिएगा, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट के तहत मनाया जाता है। आई की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है, तो हम एक ऐसा ही गाना डेडिकेट करना चाहेंगे। बहुत ही प्यारे से गाने हैं हमारे, सुनते रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी के साथ ओनली ऑन FM रेनबो।

उसमें 4 से 6 घंटे में हो जाना चाहिए। कौन कर सकता है दान? उम्र, चश्मा पहनने या जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर जैसे सामान्य बीमारियों के बावजूद कोई भी व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकता है। मतलब उम्र जो ज़्यादा है, या तो चश्मा है या तो आपको डायबिटीज़ है, तो नहीं कर सकते। एक दान से 2 जीवन, एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 दृष्टिहीन लोगों की ज़िंदगी में रोशनी आ सकती है। तो आई एम श्योर कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। वैसे तो बातें बहुत करनी है, लेकिन 10:52 होने को है और समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। तो कुछ और गाने जो हैं वो भी हम आंखों पे ही प्ले करेंगे और इनको डेडिकेट करना चाहेंगे, इस पखवाड़ा को। बस हमें याद रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय, मिलेंगे, टेक केयर, एंड आज का अपना जो अपना दिन है वो बहुत अच्छा जाए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 11 बज रहे हैं, समय जानने के इस घंटे के समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करना तथा साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं खेलो इंडिया तथा पैरा खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक के लिए पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। आगे है, प्रख्यात मराठी व्याकरणविद, लेखिका और शिक्षाविद यास्मीन शेख का कल पुणे में निधन हो गया। वे 101 वर्ष की थी। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर के मिलन कॉलेज और मुंबई स्थित सायन में स्थित SIES कॉलेज में मराठी की प्राध्यापिका के रूप में सेवाएं दी थी। और अंत में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3-4 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर

साफ रहेगा। मुंबई से लगे ठाणे, रायगढ़ और पुणे जिलों में भी इस दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसी के साथ समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। हाँ जी बिल्कुल, म्यूजिकली और 11:01 और 34:35 हो रहे हैं। मैं सोनाली आज आपके साथ हूँ। सुबह सुबह मंगलवार की सुबह है और आप और हम साथ हैं भाई। इससे बढ़िया हफ्ते की शुरुआत, मतलब कल मंडे हो चुका है, आज ट्यूसडे है, हफ्ते की शुरुआत और क्या होगी। तो चलिए, जब शुरुआत हो ही गई है तो इसे और भी म्यूजिकल मेलोडियस बना लेते हैं। आपके साथ हूँ मैं 2 बजे तक। गाने होंगे, 12:30 बजे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होगा, लेकिन साथ साथ हम और आप भी होंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सुनते रहिएगा गुड मॉर्निंग।

जयदीप साहनी और पीयूष मिश्रा के लिखे हुए बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़, आजा नचले इस फिल्म का गाना भी आप और हम सुन रहे थे प्रोग्राम जिसका नाम है ब्रेक फ्री। और आपको बता दूं 8657661071 पर आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके कि आपने किस एरिया से ट्यून इन किया हुआ है, DTH पे सुन रहे, ऐप पे सुन रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं। सो कहते हैं ना, थोड़ी सी जानकारी आपकी और हमारी साझा होती रहती है। साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक बात आपके साथ जो अपने इस ब्रेक फ्री प्रोग्राम के लिए मैं लेकर आई थी, वो बात ऐसी है कि कुछ दिनों से मैं भी कई लोगों के साथ जब मेरी मुलाकात होती रहती है तो आमतौर पे एक बात बहुत ही कहते ना कि एक दिल में लगती है कह लीजिए, या वो बात बहुत ध्यान में आती है, वो ये होती है कि आमतौर पर हर एक इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका जो रहता है ना, वो आमतौर पर एकदम सही लगता है। मतलब जैसे जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, मुझे लगता है कि यही सही है और हर एक इंसान ने ऐसा ही करना चाहिए। अगर मैं सुबह उठ के वॉक ले रही हूँ तो हर इंसान को सुबह उठ के ही वॉक लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि चूंकि वो हमारे लिए सही है तो वो हर एक इंसान के लिए सही है, और इस बात के चलते हम बहुत सारी बातों को कहते हैं ना ऊपर नीचे कह लीजिए, या सलाह देने की बात होती है उस तरह से हम करने लग जाते हैं। सो आज हम अपने इस शो में कुछ इसी मुद्दे को लेकर थोड़ी सी और बात करेंगे। आप भी अपने जो विचार है मुझ तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो, और आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ समय तक रेडियो पर नहीं आ पाते हैं लेकिन आपकी मेमोरी में हम बिल्कुल उतने ही ताज़ा रहते हैं जितने आमतौर पर इंसान होते हैं और होने चाहिए। सो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी तरफ से इस तरह से मैसेज आते हैं और बात होती है, जब चीज़ें आगे बढ़ती है। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पर, और अगला गाना प्ले करती हूँ और यस अपने शो को हम आगे बढ़ाते। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग।

0: रिस्पांस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: 11:26 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है ब्रेक फ्री. मैं सोनाली आपके साथ हूँ और आपने ट्यून इन किया हुआ है 107.1 FM रेनबो. मैंने आपसे पूछा था कि बताइएगा कहाँ से सुन रहे हैं आप हमें ट्यून करके. तो निशा लोहार जी का गोवंडी से मैसेज आया और दीपा पालकर जो बहुत ही रेगुलर लिसनर है उनका मैसेज आया है. विजेंद्र घटोल का अकोला से मैसेज आया है. साथ में ही विशाल बापट का मैसेज आया है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से. सो विशाल जी बताइए ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन का मौसम कैसा है. यहाँ तो बीच में से ही बारिश हो जाती है, बीच में ही धूप निकल आती है, एकदम ह्यूमिड सा मौसम हो गया है. आप बताइए ब्रिस्बेन का, कहते ना कि मौसम कैसा है, क्या क्या चल रहा है वहाँ पे. साथ ही साथ में महेश बोहरा जी का मैसेज आया है जो अजमेर राजस्थान से सुन रहे हैं. अंजू जी का अंधेरी से मैसेज आया है. फिरोज सिगनपुरिया जी का मैसेज आया है. अमित बापट, अमित भगत जी का मैसेज आया है. प्रमोद चिंचोलकर का मैसेज आया. पंकज मोहर, प्रणव शिंदे, धनंजय जी का मैसेज आया है और नमस्ते कहाँ है. बहुत बहुत नमस्ते आपको भी. राकेश माथुर जी का पुणे से मैसेज आया है. वैदेही जी का मैसेज आया है. जी हाँ, तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं आप सभी की तरफ से. बहुत अच्छा लगता है जब मैसेज आते हैं. साथ साथ जो हम बात कर रहे थे वो मैं आपको, उस बात को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं. मैं ये कह रही थी कि दीपा जी का मैसेज आया है. उन्होंने कहा है कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए. हाँ जी, हम आम तौर पर दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन उन बातों को स्वीकार कई बार करने की जगह हम क्या करते हैं, हम अपनी बात को ही सच मानकर, मतलब यूँ कहते हैं ना कि सजेशंस की तरफ से हम एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दीवार बना लेते हैं, चाइना वॉल से भी बड़ा हमारा मतलब माइंड ब्लॉक होता है, जिसमें कि हम आम तौर पर अगर कोई कहता है कि आप ऐसा कर लीजिए थोड़ा बेटर होगा, लेकिन हम तो वही करते हैं जो हमको सही लगता है या हमने जो हमारे लिए सही है वो सोच रखा होता है आम तौर पर. और इसी वजह से ऐसा होता है कि बहुत बार कहते हैं ना कि जनरेशन गैप आ जाता है, तो बड़ों को लगता है कि जो उनकी जीवन शैली रही है वही सही है और छोटों को लगता है कि जो उनकी जीवन शैली है वही सही है. सुन हम सबकी लेते हैं, लेकिन करने पर जब आती है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी. और बता दूँ आपको कि 8657661071 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आप कहाँ से ट्यून इन किया हुआ है आपने. बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की बातें सुनने में. ओंकार काटकर का पंढरपुर से मैसेज आया है. समीर खान का वाल सावंगी महाराष्ट्र से फोन आया, मैसेज आया है. वाल सावंगी बहुत ही अलग सा नाम लगता है नहीं. साथ ही साथ में मिलेश गजानन राउत का वाडवन से मैसेज आया है. जी बिल्कुल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू.
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.

जब इतने म्यूजिकल मेलोडियस गाने चल रहे हो तो देख इधर यार, ध्यान किधर है, किसी और रेडियो स्टेशन की तरफ नहीं, सिर्फ एफएम रेनबो के साथ ही रहना है आप सभी को, क्योंकि यहीं पे है जहां पे आपके मनपसंद के गाने बजेंगे एक बजे के बाद। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे कि आप अपने बात हम तक पहुँचा सकते हैं। साथ साथ मैं बता दूँ कि राजेंद्र परमार जी का मैसेज आया है, और चूँकि मैंने पूछा था विशाल बापड़ जी से कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में क्या मौसम चल रहा है, तो भाई वहाँ तो शाम के 4 बज रहे हैं और काफ़ी प्लेजेंट सा मौसम है और 23-24 डिग्री क्या मौसम है। एनीवेज, लेकिन हम जहाँ हैं तो हम हमारे मौसम को म्यूजिकल बना लेते हैं, और इसी बात के चलते अब हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ हम बात कर रहे थे कि आमतौर पर, मतलब जो कहते हैं ना कि इंसानों की एक थोड़ा सा टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और कई बार हम सोशल मीडिया पर इन बातों को पोस्ट भी देखते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा सा स्वीकार कर लेते, नहीं नहीं हम तो सबकी सुन लेते हैं ऐसा वैसा, लेकिन असल में हम कई बार अपनी बातों को काफ़ी हद तक थोपने की भी कोशिश करते रहते हैं किसी बात के चलते। यंग जनरेशन ओल्डर जनरेशन का ये जो फ्रिक्शन है ना, ये थोड़ा सा इसी बात की वजह से भी होता है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर, अगला गाना प्ले करती हूँ आप सभी के लिए, सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। कुछ पुराने गाने हमेशा ही यादों को ताज़ा कर देते हैं, और इसी बात के चलते अगला गाना प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, और फिर अपने कुछ मतलब एक दो गानों के बाद में हम वापस से लौट आएंगे अपने नए गानों की तरफ। लेकिन आप अपनी जो म्यूजिकल लिस्ट है उसको रेडी रखिएगा, क्योंकि एक बजे के बाद होगा प्रोग्राम। हम

जिसमें आप आपकी रिक्वेस्ट के गाने सुन पाएंगे। मैं आमतौर पर थीम लेकर आती हूँ, लेकिन आज कोई थीम नहीं लेकर आई हूँ, तो आप ही आप है और आपकी पसंद है। सो तैयार रहिएगा। लेकिन अभी के लिए ये गाना अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म से सुनिए।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

11:50 होने को है और मैंने तुझे कभी कुछ कहा था, तूने मैंने जो भी कहा वो किया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, हर एक इंसान अपने अपने थोड़े से अंदाजे से लगा लेते हैं। वो यू रिमेंबर, आप लोग भी कहीं खेलते होंगे वो चाइनीज़ विस्पर, बचपन में जब हम एक के कान में कुछ कहते हैं और वो आगे बढ़ते बढ़ते कुछ तीसरा ही हो जाता है जो सेंटेंस होता है। कुछ आमतौर पे कम्युनिकेशन का भी ऐसा ही होता है, हम शुरू बात कहाँ से करते हैं और वो कहीं के कहीं चली जाती है। इसलिए अपनी बात को जब भी किसी के सामने रखे, हमेशा एक क्लैरिटी के साथ रखे, और क्लैरिटी के साथ बात को रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद उस बात को पूरी तरह से समझे, उस पर अमल करें, है ना। तो अब 11:50 होने को है और 12 बजे होंगे समाचार। समाचार के उस पार होगा प्रोग्राम म्यूज़िक कैफ़े। म्यूज़िक कैफ़े चलेगा 12 बजे से 12:30 बजे तक। उसके बाद NCERT उमंग की तरफ से एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रहेगा जो कि रहेगा आधे घंटे का। उसके बाद हम लौट के आएंगे, 1 बजे के बाद होंगे समाचार और समाचार के बाद होगा हम तुम। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जिन्होंने आज ट्यून इन किया हुआ है। आमतौर पे जो लिसनर रेगुलर सुनते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी, उनको उनकी जो घड़ी रहती है वो आकाशवाणी के FM रेनबो के हिसाब से बिल्कुल सेट रहती है। तो चलिए, अब चूंकि आपकी घड़ियाँ तो सेट है लेकिन गाने तो हमें फिर भी बजाने हैं, तो सुनिए अब हम थोड़ा सा अपने ट्रैक को बदलते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना थोड़ा कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं। तो उसके चलते अगला गाना आप सबके लिए, ब्यूटीफुल सा ट्रैक है, शफकत अमानत अली खान साहब और सुनिधि चौहान की आवाज़ है। सुनिए, आई हेट लव स्टोरी इस फिल्म का गाना।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 12:05 हुए, समय जानने के इस घंटे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा, जिसके भीतर उन्हें कच्ची चीनी को रिफाइंड चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। आगे है, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील बालकृष्ण शुक्रे को आज राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा ने राज्य के लोकायुक्त संगठन के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। मुंबई के लोकभवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उपस्थित थे। और अंत में, अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमरीकी डॉलर का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल है। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। इसी के साथ समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।

जतिन ललित ने इस गाने को कंपोज किया है और उदित जी और अलका जी ने मिलकर गाया है। और ये जैसे वो गाते हैं ना छन छन छन, जो चूड़ी बजी है छन छन, कंगना बजा है खन खन, वो इतना ब्यूटिफुल उन्होंने गाया है कि हमारे आंखों के सामने कंगना और चूड़ी आ जाते हैं। हालांकि मतलब जो जहां सुन रहे हो ना उनको जैसे वो चूड़ी और कंगन की खनक सुनाई देती है। ये कहते हैं ना अपने म्यूजिक की खासियत होती है। 12:07 हो चुके हैं, म्यूजिक कैफे शुरू हो चुका है भाई, तो कैफे में ऑर्डर करो। बिल्कुल गाने भी ऑर्डर होंगे लेकिन 1 के बाद, जो कि प्रोग्राम हम तुम है आज, अभी ये जो प्रोग्राम है म्यूजिक कैफे जिसमें हम बात करेंगे, अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि मैं आई भी थोड़े समय के बाद हूँ, तो आमतौर पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर स्क्रोल करते रहते हैं, और स्क्रॉल करते समय एक पोस्ट मुझे दिखी और मुझे लगा कि भाई ये बात तो थोड़ी सही है। अब वो क्या बात है ये मैं आपके साथ शेयर करूं, चलो बताई देती हूं, क्योंकि आज हम भाई 12:30 के बाद तो प्रोग्राम है एनसीईआरटी का। बात ऐसी है कि वो कह रहे थे उस पोस्ट में कि अपनी जनरेशन जो है, मतलब हर जनरेशन, नॉट द यंगर जनरेशन और द ओल्डर जनरेशन, आम तौर पर लोगों को है ना अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान शांति से सो रहा होता है। मतलब स्लीप शेमिंग, जैसे कहते हैं ना बॉडी शेमिंग हो रहा है या फैट शेमिंग हो रहा है, स्लीप शेमिंग वो कह रहे थे कि जैसे अगर मैं उठ गई हूँ और मैं फ्री घूम रही हूँ और मुझे कोई इंसान सोता हुआ दिखेगा तो मैं जाके या तो फैन बंद कर दूंगी, या मतलब आमतौर पर मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आमतौर पर ये लोगों की थोड़ी आदत होती है कि 10 अभी तक क्या सो रहे हो, या कोई इंसान थका हुआ भी आए तो एक लिमिट के बाद कोई इंसान सोता हुआ दिख जाए तो बस सामने वाला इंसान थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। इस बात पे आपको क्या लगता है, क्या इंसान, मतलब आमतौर पे इंसान के, हर एक इंसान की फितरत होती है कितना एक मॉडरेट स्लीप की जरूरत होती है, 8-7 जिस इंसान की जैसी प्रकृति उस हिसाब से, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सो जाते हैं, या इंसान को आप कैसे इस तरह बात को रिएक्ट करेंगे कि अगर कोई इंसान सो रहा हो तो आपको क्या लगता है कि क्या सोते रहना चाहिए, या इंसान को एक लेवल के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए? स्लीप शेमिंग जैसा कि मैं कह रही हूँ, तो कोई शांति से सो रहा हो तो मतलब कहता फ़ैन थोड़ा स्लो कर दिया, या एसी ऑफ कर दिया, या विंडो खोल दी, या उठने के बाद कितना सोते हो ये कोई तरीका होता है, इस तरह की डांट लगा दी, या ऐसा कभी कुछ आपने किया होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। 12:09 हो रहे हैं, और जो हम पिछले घंटे की जो बात करते हैं पिछले आर की, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। हम कह रहे थे कि आमतौर पर जो लोग होते हैं वो जनरेशन गैप की बात कर रहे थे, तो एक मैसेज आया संजय दर्शन जी का, उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा समझ लीजिए और अपने आप को थोड़ा छोटा, तो जनरेशन गैप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, है ना, सही सी बात। चलिए अब अगला गाना प्ले करते हैं आप सभी के लिए, सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो, क्योंकि ये चल रहा है म्यूजिक कैफे। चलो ये गाने को सुनिए, और आमतौर पर जब बारिश के गाने होते हैं ना, तो बरसात वगैरह वगैरह या बारिश, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो गाना है ना इसमें बरखा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया जो आमतौर पे इतना होता नहीं है। सुनिए इस गाने को, एंजॉय कीजिए।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

कोई किसी की नींद चुरा ले वो बात अलग होती है, लेकिन आम तौर पे अगर कोई वाकई रेस्ट चाहता है तो उसे रेस्ट मिलना चाहिए। इस बात का जो इंसान ने आम तौर पे, हालांकि इसका कहते ना गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान सो रहा है पीसफुली और उस इंसान को अगर उस नींद की ज़रूरत है तो ये एक कहते ना एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बात कही जाए तो उस इंसान को जितनी ज़रूरत है उतनी नींद मिलनी चाहिए। तो वो जो स्लीप शेमिंग वाली बात थी वो तो एक अलग बात थी कि आमतौर पर ऐसा होता है। आप अपने आप को टटोलिए, खंगालिए कि क्या अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई इंसान अगर शांति से सो रहा है, एक ज़माने में बड़ा हुआ करता था कि बिल्कुल अगर उठ के जा रहे हैं,

सो रहा है तो उसको बड़ा परेशान किया जाता था कि इतने क्यों सो रहे हो। आजकल तो खैर चीज़ें बदल गई है, लेकिन ये जो सारी बातें होती है ये कुछ बताने के लिए होती है कि आप अपने आप में टटोल के देखिए कि अगर कोई इंसान रेस्ट कर रहा है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए वो कर रहा होगा। इस बात को थोड़ा सोचिए, थोड़े इस बात के तह तक जाइए और फिर अपने को मतलब जो आगे आप चाहते हैं वो करिए। 12:22 हो चुके हैं, प्रोग्राम म्यूजिक कैफ़े। जी हाँ, कैफ़े दोपहर का टाइम है, कैफ़े में तो भाई बड़ी कहते हैं ना भीड़ होती है जो खाने का चीज़ कॉफ़ी चाय वगैरह वगैरह के साथ में। लेकिन अभी हम आपके लिए जो परोसने वाले हैं वो एक गाना होगा और उसके बाद होगा NCERT उमंग का प्रोग्राम जिसमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें होंगी। तो कुछ खाते समय या बात करते समय वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लीजिएगा। 1 बजे समाचार, समाचारों के उस पार आप और हम लौट कर आएंगे प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है हम तुम। सो हम तुम के लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे कि आप मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं आपकी पसंद के गानों का। आज मैं कोई थीम नहीं लेकर आई हूँ तो आपके लिए कहते ना खुला मैदान है, आप अपनी पसंद का जो गाना चाहे मुझ तक भेजिए। लेकिन भाई 1-2 गाने भेजिए, 10-15 नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रिक्वेस्ट आती है और फिर ऐसा होता है कि हमारे तो गाने बजे ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इसका थोड़ा सा कहते हैं ना कि आप ही नहीं बहुत सारे लिसनर हैं। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। इस आर का ये गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ये जो गाना है ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर से आपके लिए लैंड हो रहा है, सुनिए। चांदनी आया है तेरा दीवाना, जानम समझा करो फिल्म का गाना है, ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप सबके लिए। गुड आफ्टरनून।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो ठीक 12:30 बजे NCRT उमंग से जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रहेगा सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु

0: पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
0: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
1: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
0: जी।
1: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
0: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
1: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
0: जी
1: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
0: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
1: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
0: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं, और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
0: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
1: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे
0: जी।
1: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
0: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
0: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
1: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है
0: जी।
1: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
0: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है
1: जी। तो श्रोताओ, लोंगवा

0: गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
0: तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी
3: का क्या हुआ है? हमारे घर के सारे सामान बह
4: गए
5: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया,
6: सारी फसल बर्बाद,
7: फसल बह गई।
8: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
9: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
10: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
9: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
8: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
9: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा काट।
11: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
8: ये
10: धीरे धीरे कल कारखाना

0: करने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
4: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडी इस गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
7: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
4: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
7: सारी फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
7: सारे
6: सामान जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी,
6: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी, चलो
7: चलो चलो,
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
7: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
8: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने

0: कचरा गिराया। उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया। लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी। मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
2: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा है जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो है पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी।

0: इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की।

0: 77 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
1: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
2: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
3: थैंक यू सर।
2: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
3: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
2: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
3: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
2: अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
3: सर।
2: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
3: ओह, थैंक यू सो मच सर।
0: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: आज तो बड़ा मजा आ जाएगा दौड़ देखने में।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश के पीटी उषा जो भाग ले रही हैं।
4: इस तरफ से ऊंचा हो जाएगा। देखो देखो, शुरू हो गए।
5: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे ये क्या हुआ? अरे वो पहुंच गए मुझे रेखा पर। जीत गए भाई, जीत गए।
0: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी। शुरुआत में पिछड़ गई लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
1: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकेंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
1: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी

0: इस जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
1: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
0: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स हिट एंड हॉट प्रोग्राम का नाम है और जहाँ पे गाने तो हिट होते ही हैं और मौसम बाहर थोड़ा सा हॉट कभी कभी हो जाता है, सो हिट एंड हॉट। चलिए दोपहर का टाइम है, 1:05 जैसे कि बताया, तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और अपनी रिक्वेस्ट जो है वो आप 8657661071 पर मुझ तक पहुँचा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करिएगा मैसेज ही भेजें, या फिर अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो फिर 4515412 ये हमारा नंबर रहेगा, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करें और गाना बज जाए, क्या ये मैजिक जैसा नहीं है, है ना? तो मैजिक आप सबके लिए, सुनिए, बने रहिए हमारे साथ।

गोरिया चुराना मेरा जिया। भाई आप लोगों ने जिया तो मेरा चुरा लिया है, इतने अच्छे अच्छे गाने आप लोग भेज रहे हैं, और रादर इतने सारे गाने भेज रहे हैं। मैंने ये जो गाना अभी प्ले किया कुलीना

नंबर वन का अमित भगत के रिक्वेस्ट पे प्ले किया, और इट्स मैजिक जो गाना था वो जितेंद्र पाटिल के रिक्वेस्ट पे प्ले किया था। साथ ही साथ में मैं नाम बता देती हूँ सभी के, क्योंकि संभव नहीं हो पाएगा कि मैं इतने सारे गाने प्ले कर सकूँ, लेकिन आप इतने दिल से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आपका नाम तो आना ही चाहिए। और क्यों भाई प्रोग्राम के एंड में आए, शुरुआत में ही ले लेते हैं। तो बता देती हूँ, राजशेखर बंडगर का सोलापुर से मैसेज आया है, कोशिश करूंगी मैं आपका भी गाना प्ले कर सकूँ। गुरमीत सिंह मीता जी का साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से मैसेज आया है, बिल्कुल नमस्कार जी। शुभलक्ष्मी मस्तकार का मैसेज आया है, साथ ही साथ में तुलसी मस्किन और वीना मस्किन का चंडीगढ़ और से मैसेज नहीं, ये शाहदरा दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, और इनके साथ ही है चंडीगढ़ से भी कुछ लोग। विजेंद्र घटोल जी का अकोला से, अनिल कामली का हिंगोली से मैसेज आया है, साथ ही साथ में हितेंद्र दास जी का भी मैसेज आया है, वो कह रहे हैं मेरा नाम ज़रूर ले लेना, मैं असम से मैसेज कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, आई होप हितेंद्र दास जी आप और सुरक्षित होंगे, क्योंकि असम में जो परिस्थितियाँ हैं जो हम टीवी पे देखते हैं उसके हिसाब से पूछ रही हूँ। डिकेस्ट्रो जॉन का मैसेज आया है, जो इनका पूरा फैमिली है, और सहारनपुर जनकपुरी से इन्होंने मैसेज किया है। टिंकू वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू पिंकी लवली, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बचपन में नहीं हम रेडियो सुना करते थे। हीरामणी वर्मा जी का मैसेज आया है, पूरा परिवार है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। संदीप कुमार जी का मैसेज आया है, और संदीप ज्योति पूरा मक्कड़ परिवार है, गोराया जालंधर से। मेहर अरोरा और पूरा फैमिली है इनका श्रीगंगानगर राजस्थान से। प्रदीप ठाकुर जी का पनवेल से मैसेज आया, अजय साखरे जी का इंदौर से, सुनील पाठक जी का मैसेज आया है, ये भी पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं और पंजाब से ही सुन रहे हैं। प्रणव शिंदे जी का मैसेज आया है, और जो बहुत कहते हैं कि मुझे हर गाने के साथ नाम बताना चाहिए, तो किस तरह से संभव हो, इतनी सारे रिक्वेस्ट है, तो कोशिश करेंगे जितने गाने बज रहे हैं उनके साथ नाम बताने की। दिग्दर्शक और कविता का मैसेज आया है, राकेश माथुर जी का मैसेज आया है, साथ में कुणाल पावस्कर जी का मैसेज आया है, मृत्युदंड फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, जो मैं अभी कुछ ही देर में प्ले करने वाली हूँ। जितेंद्र पाटिल जी का तो मैसेज मैं गाना प्ले कर चुकी। पंकज मोहट, बाबा दादर, राजेंद्र परमार जी, संजय दर्शन जी, आकांक्षा मनोज सिन्हा का मैसेज आया है, ये अहमदाबाद से सुन रही है। अंजू अंधेरी से मैसेज की है, हाँ, और मैसेज तो खैर आ ही रहे हैं। वैदेही जी का मैसेज आया, अमित भगत, काजल कक्कर जी का चेंबूर से मैसेज आया है, और प्रणव शिंदे जी का मैसेज आया, बहुत दूर मुंबई से मैसेज भेज रहे हैं, हाँ जी बहुत दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जब हम बात कर रहे हैं कि मृत्युदंड फिल्म का गाना प्ले करना है, तो मैं प्ले कर रही हूँ मृत्युदंड फिल्म का गाना। बता दूँ 1:30 बजे होंगे समाचार, नाम सभी लेना बहुत ज़रूरी थे इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन हाँ सबके नाम आना मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग इतने प्यार से मैसेज करते हैं, तो ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिएगा।

चलिए अब अपने हिट एंड हॉट को कंटिन्यू करते हैं आप ही की रिक्वेस्ट. ब्यूटीफुल सा ट्रैक. कुछ और मैसेज आए हैं, उन सबके भी नाम मैं अभी शेयर करूंगी. और बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कुछ नाम भी जो सिर्फ नाम भेजते हैं और कहते हैं कि बस आप रिक्वेस्ट में शामिल कर लीजिएगा या हमारा नाम पढ़ दीजिएगा. रेडियो के कहते ना कि सच्चे आशिक जिसे हम कह सकते. सुनिए ये गाना परदेश फिल्म से आप सबके लिए.

अभी अभी जिनके मैसेज आए हैं उनके नाम बता दूं, प्रदीप अनंत कृष्णन जी का मैसेज आया है, साथ ही TDM ये शुभचंद्र साहिल और बिट्टा बजाज ये चंडीगढ़ मोहाली से मैसेज किया है, थैंक यू मैसेज करने के लिए। साथ ही साथ में मैसेज आया है मधुसूदन तांबट जी का, और वैसे मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग हैं ना YouTube के लिंक्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये वाला गाना है, इस तरह से नहीं गाना भेजिए, गाना जो आप सुनना चाहते हैं वो गाने का नाम और उसकी फिल्म का नाम, हो सके तो सिंगर का नाम अगर भेज सके तो वो ज़रूरी होता है, ना कि YouTube लिंक, क्योंकि YouTube लिंक से हमें उसका कुछ मतलब, हम कुछ कर नहीं पाते उस लिंक का। साथ ही साथ अभिजीत गवांडकर का मैसेज आया है, ये उमरखेड़ महाराष्ट्र से इन्होंने मैसेज किया है, और मीना जी का मैसेज आया है, चेतन कुमार का मानपुर गया बिहार से मैसेज आया है, साथ ही जलंधर सिटी सोनू रवि राज और पूरा फैमिली है ये मैसेज किया है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने सारे लोगों ने मैसेज किया है उन सभीओं का, बहुत अच्छा लगता है जब मैसेज आते हैं, सबके नाम लेना ज़रूरी है, सबके नाम ले लेते हैं और गाने भी प्ले करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि गानों के साथ नाम लो, नाम के साथ गाने लो, पुराने लिसनर्स के नहीं, नए लिसनर्स के नाम लो, इस तरह से नए या पुराने लिसनर कोई नहीं होते हैं, जो गाने सिलेक्ट किए जाते हैं उसी हिसाब से कुछ एक थॉट रहता है गानों के पीछे, वो अगर सैड गाने बज रहे हैं तो सैड के साथ जाते हैं, हैप्पी गाने बज रहे हैं, रोमांटिक गाने बज रहे हैं तो उस थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, नए या पुराने लिसनर कोई नहीं होते, लिसनर तो सभी अजीज होते हैं। 1:47, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम के साथ में अगला गाना आप सभी के लिए प्ले कर रही हूं, और सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ कुछ गाने आप सबके लिए, यस कुछ गाने जो होते हैं वो खास भी होते हैं और सबके अजीज भी होते हैं, तो चलिए ये गाना प्ले कर रही हूँ आप सबके लिए, आप ही की रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा हमारे साथ।

डॉन फिल्म से ये गाना भी आपके लिए प्ले किया था, 1:53, यानी कि भाई इस हिट एंड हॉट को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। मीना जी का मैसेज आया था।

0: are looking for quick wickets to bowl out the host and enforce a follow-on. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन

0: करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
3: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
4: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन

0: परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
1: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
2: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
1: We want to create global standard air cargo facilities across the country.
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,000,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326

रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: पांच बजकर दो मिनट का वक्त और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी में बात होगी जिंदगी से लबरेज कुछ ऐसी जिसका एक अलग पर्सपेक्टिव निकल के आता है। वो बातें हैं गम से रिलेटेड। गम आमतौर से गम की जब भी बात आती है तो इससे लोग भागते हैं या इसको लोग नेगेटिव पक्ष ही देख पाते हैं इसका, लेकिन गम से क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकती हैं उन चीज़ों के बारे में बात होगी। फिलहाल तो एक खूबसूरत से गाने से आपको जोड़ते हैं, आप सुनते रहिए, बने रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई और अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ।

0: सब कुछ अनिश्चित है, सिर्फ यही बात निश्चित है, चीजें सदा के लिए नहीं होती। ये बात जिंदगी में जितनी जल्दी समझ ली जाए, जिंदगी उतनी ही सुखमय, खुशहाल और खूबसूरत हो जाती है। हम हैं आपके साथ, आपके दिल की आवाज आदित्य आपके साथ, और आप लव यू जिंदगी में लुत्फंदोज हो रहे हैं हमारे साथ। बात करते हैं शुरू कुछ पंक्तियों से। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश, सदा ना जुगमे जीवना, सदा ना काला केश, सदा ना फूले केतकी, सदा ना सावन होए, सदा ना बिबदा सह सके रह सके, सदा ना सुख भी होए, सदा ना मौज बसंतरी, सदा ना ग्रीष्म भाण, सदा ना जोवन थिर रहे, सदा ना संपत मान, सदा ना काहू की रही गल प्रीतम की बाह, ढलते ढलते ढल ढल गई तरवर की सी छां। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा ना कि वक्त वक्त की बात है। इससे सटीक मेरे हिसाब से कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी बात सदा के लिए नहीं रहती, वक्त के साथ उसे गुजरना ही होता है, फिर चाहे वो सुख हो या दुख हो। और फिर जब इंसान किसी दुख में डूबा हो या किसी दुख से, किसी गम से लबरेज हो, तो ये बात और ज्यादा तसल्ली बख्श हो जाती है ना। एक खूबसूरत सा गाना सुनवाते हैं आपको, सुन रही है 107.1 FM रेनबो मुंबई, और अपने दिल की आवाज आदित्य को।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

मशहूर गीतकार और फिल्म निर्देशक गुलजार साहब फरमाते हैं कि खुशी जो है ना एक फुलझड़ी की तरह होती है, तुरंत जलती है, खुशी देती है, पर जो गम होता है ना वो जरा देर तक रहता है, लंबा असर छोड़ता है। अगर हम चाहें भी तो उससे इतनी आसानी से पार नहीं पा सकते, और वो अपने वक्त की हकीकत भी होता है, और इस बात की तस्दीक भी करता है, पुष्टि भी करता है कि हर मौसम एक सा नहीं हो सकता, और शायद इसी का नाम जिंदगी भी है, जहां कहीं धूप है तो कहीं छांव है, कभी खुशी है

तो कभी हम यही जिंदगी के दो रंग हैं। अब इसमें चूज हमें करना है कि हमें गम से अपनी यारी बढ़ानी है या खुशी से अपना दोस्ताना मजबूत करना है।

5:34 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और बात उस चीज से जिससे सब भागते हैं, बात है गम की। गम एक ऐसा एहसास है हर किसी को इतनी आसानी से उसको नाम भी नहीं देना चाहिए, उसको उससे थोड़ा सा बच के संभल के रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस क्षणिक उस मोमेंट में थोड़ा सा उदास होते हैं और हम उसे गम का नाम दे देते हैं। गम तो बहुत गहरी चीज़ है, बहुत जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे, जब थोड़ा सा आप तफसील से इसे जानेंगे, थोड़ा सा गहरे उतरेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि गम क्या है। तो छोटी मोटी उदासियों को, छोटे मोटे कहें कि डाउन्स को, और छोटे मोटे जो भी चीज़ें आपके ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो उन्हें गम का, दुश्वारी का, मुसीबत का नाम मत दें, क्योंकि गम को तो बहुत शाइस्तगी से, बहुत सलीके से समझना पड़ेगा कि गम आखिर है क्या। क्योंकि गम जो आता है ना, वो आके तुरंत चला नहीं जाता है, गम तो देर तक ठहरता है ना। और किसी भी चीज़ को आप गम का नाम दे दें तो ये ठीक बात नहीं होगी। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वाकई में एक मोमेंट की उदासी है या देर तक ठहरने वाला गम है। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें उतना डूबें, उतना उतरें उस उदासी में जो गम में तब्दील हो जाए। तो कभी कभी आपको ये भी गौर करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये घट रही हैं, ये क्या है वास्तव में। और ज़िंदगी से आप पूछ सकते हैं, कुछ तो बता ज़िंदगी।

ये जो गम है ना, अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड जरूर है, पर यही गम या इस गम से जब आपका सामना होता है तो उन वाकयात से भी सामना होता है जहाँ चीज़ें बेहतर नहीं थी, फिर आप खुद को संभालना सीखते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं कि चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। तो ये आपको रूबरू करवाता है आपके अंदर कितना एक मजबूत इंसान है। जब ऐसा वक्त था जहाँ से आपको लग रहा था कि दुनिया की तमाम मुश्किलें सिर्फ आपके हिस्से आ गई हैं, जहाँ दुश्वारियों ने आपका सारा दामन थाम रखा था, जहाँ से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वहां से निकलकर अगर आपने एक ऐसा रास्ता तय किया है जो उदाहरण बन जाए तो वो आपके खुद के पोटेंशियल के बारे में भी बताता है और यकीन करने पर मजबूर कर देता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो छोटे मोटे गम अच्छे हैं, वो आपको उन मुश्किलों से निकलने का रास्ता सिखाते हैं, आपको एक मजबूत इंसान भी बनाते हैं, है ना।

वो बातें जो आप किसी से कहने के लिए अपने अंदर जमा करके रखते हैं और लंबे समय तक उन्हें आप अपने अंदर ही जज्ब करके रखते हैं, वही बातें दरअसल वही एग्जैक्टली वही बातें आपको तकलीफ देती हैं या शायद अंदर से कभी कभी खोखला भी कर देती हैं। सही वक्त पर उन्हें बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। और जॉन एलिया साहब फरमाते हैं वो बातें खा गई मुझको जिन्हें मैं पी गया था।

गम जिंदगी में आए और आप अपनी कोशिश से उससे बाहर निकल आए, ये अच्छी बात है। पर अपने गमों अपनी नाकामियों का जेवर बनाकर हमेशा सीने से लगाए रखना, ये ठीक बात है। ये चीज़ें आपको और आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि मुश्किलों का सिलसिला कभी थमता नहीं, चुनौतियों का स्तर बढ़ता घटता जरूर रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम जिन चीज़ों से पार पा चुके होते हैं और उनका अपने ऊपर एक बर्डन लेकर चल रहे होते हैं, या लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि देखो हम यहाँ से निकले हैं, या हमारे साथ इस लेवल की चीज़ें गुजरी हैं, या हमारे गम इतने बड़े हैं, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना। दरअसल तब आप सबसे बड़ी चीज़ों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच लेते हैं कि आप शायद इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। पर अगर

नज़र उठाकर देखें तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें अपने गम बहुत बड़े लगते हैं, अपनी नाकामियां बहुत बड़ी लगती हैं, अपनी मुसीबतें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम इसी संदर्भ में दूसरों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि दुनिया में और भी बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, बहुत सारे गम हैं जो शायद जिनसे हम नहीं गुजरे हैं। और जावेद अख्तर साहब कहते भी हैं कि

लव यू जिंदगी का सफर यहीं तक, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। समाचार के अंतराल के उस पार आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप कहीं मत जाइए, ये साथ यूं ही बनाए रखिए। सुनते 107.1 एफएम रेनबो मुंबई, अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और हम आपसे क्या कहेंगे, इस गाने में सुनिए।

छः बजकर 15 मिनट का वक्त और देखते देखते 16 मिनट भी हो गए। ये वक्त बताता है, ये वक्त है मौसीकी का, शायरी का, इल्म फन का, मोहब्बत का, इसी मोहब्बत में डूब जाने का। तो हम भी ऐसा करेंगे कि इस मोहब्बत में एक गहराई तक होकर वापस आएंगे। अंदाज़े बयां सुन रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। आशिकी, आशिकी एक एहसास, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा इमोशन जिसको सुनते ही जहन में कुछ ना कुछ होने लगता है। और जब इंसान आशिकी में होता है तो फिर उसे यूं कहें कि उसका खुदा बदल जाता है, और ये भी कह सकते हैं कि उसका खुदा उसे इंसानी स्वरूप में, इंसानी रूप में उसके माशूक में नजर आने लगता है। फिर वही इंसान उसके लिए खुदा हो जाता है और वो उस खुदा के लिए हजारों हजारों जतन करता है, उसे खास महसूस करवाता है, उसके साथ साथ चलता है। कभी उसके सहारे हो जाता है तो कभी उसका सहारा ले लेता है। तब निकलते हैं सलमान अख्तर की अशआर। ये तमन्ना है कि किसी तरह तुम्हारे हो जाएं, ये तमन्ना है कि किसी तरह तुम्हारे हो जाएं, जान देते हैं जो तुम्हें जान से प्यारे हो जाएं। तुमको मजबूत जो पाए तो करें 100-100 नाज, तुमको मजबूत जो पाए तो करें 100-100 नाज, तुमको कमजोर जो पाए तो सहारे हो जाएं। इस्तकबाल है आपका इस महफिल में, सुनते रहिए।

कुछ पहलू ऐसे होते हैं जहां दो चाहने वालों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, और जब ऐसा होता है तो थोड़ी सी तकरार, थोड़ी सी नाराजगी पैदा होती है, और उसी तकरार में पता लगता है कि इस मोहब्बत की शायस्तगी, इस मोहब्बत की गहराई कितनी है। उसी में मोहब्बत मजबूत होती है जब उस तकरार के बाद दो चाहने वाले एक साथ आते हैं, तब वो यकीन कर पाते हैं कि ये जो रब्त है, ये संबंध है, ये बस यूं ही नहीं है। कोई तो तार है जो दिल से दिल तक जुड़ा हुआ है। ये जो तकरार है हमारे बीच, आखिरी बार है हमारे बीच। ये जो तकरार है हमारे बीच, आखिरी बार है हमारे बीच। कुछ तो होता है उसको देखने से, कुछ तो होता है उसको देखने से। कोई तो तार है हमारे बीच।

6:37 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। एहसास के रिश्ते कुछ अलग से होते हैं, उनमें जज्बात की गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है।

और कभी हर छोटे से छोटा कदम भी बहुत बड़ा लगता है। फिर चाहे वो नाराजगी ही क्यों ना हो, ऐसा लगता है कि उस माशूक के रूठने पर पूरी कायनात रूठ गई है। अब जिंदगी में कोई रस नहीं है, अब जिंदगी बेवजह हो गई है। उसके फिर से बात करने का इंतजार, उसके फिर से साथ होने का इंतजार दिल ही दिल में आवाज देता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। और तब एहसन मारहरवी साहब के अशआर निकलते हैं, फरमाते हैं कि किसी माशूक का आशिक से खफा हो जाना, किसी माशूक का आशिक से खफा हो जाना, रूह का जिस्म से गोया है जुदा हो जाना। जिस्म जैसे रूह से अलग हो गई हो, ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो बस देखते ही रहते हैं, मुलाकात के उस लम्हे को ठहर जाने को कहते हैं और फिर कह उठते हैं, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।

मोहब्बत का एहसास कभी कभी सबसे बड़े सुकून की वजह बनता है, तो कभी कभी सबसे बड़ी उदासी की भी। हजार दिल में सवाल होते हैं लेकिन उसे कहने का मन नहीं होता। हजार ऐसे पहलू होते हैं जिन पर बात करनी चाहिए लेकिन बात करने का मन नहीं होता। मशहूर शायर अहमद सलमान साहब अपने अशार में उन मौजूआत को दर्ज करते हैं और फरमाते हैं कि हजार दिल में सवाल रखना उसे न कहना, हजार दिल में सवाल रखना उसे न कहना, और इस हुनर में कमाल रखना उसे न कहना। तुम्हारी सारी उदासियों का सबब वही है, ये ठीक है, पर ख्याल रखना उसे न कहना। वो इस बहाने पलट के आएगा देख लेना, किताब उसकी संभाल रखना उसे न कहना। वो तरके उल्फत की बात छेड़े तो मान जाना ब्रेकअप, वो तरके उल्फत की बात छेड़े तो मान जाना, फिर अपना जैसा भी हाल रखना उसे न कहना। ये रख रखाव ही शायरी है सो मेरे शायर, गजल में उसका जमाल रखना, उसकी खूबसूरती रखना उसे न कहना। गजल में उसका जमाल रखना उसे न कहना।

6:52 का वक्त और आप लुत्फ ले रहे हैं अंदाज़े बयां का अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। दुनिया में जो कुछ सबसे खूबसूरत रिश्ते हैं ना, उनमें दोस्ती का एक अलग मेयार है, एक अलग स्टैंडर्ड है, एक अलग स्थान है। और अक्सर मोहब्बत के रिश्ते की इब्तिदा शुरुआत भी वहीं से होती है। ये वो रिश्ते हैं जहां बहुत कुछ बिना कहे समझ लिया जाता है, और जब ऐसा होता है तब आपके सामने दोस्ती का एक नया मानी खुलकर आता है। दोस्ती का मतलब एक नए अर्थ में समझ में आता है। आदिल रशीद साहब फरमाते हैं कि कमाल ये है, उस बात की खबर है उसे, कमाल ये है उस बात की खबर है उसे, जो खुद से भी अब तक नहीं कही मैंने। ये है दोस्ती। कमाल ये है उस बात की खबर है उसे, जो खुद से भी अब तक नहीं कही मैंने। तुम्हारे बाद ही मतलब समझ में आए, पढ़ा लिखा

7:10 का वक्त और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है और खैर मकदम है और वेलकम है और गुड इवनिंग है आपको। और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी मोहब्बतें आना शुरू हो चुकी हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कहां पर आ रही हैं, तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे पास कुछ मैसेजेस, कुछ नाम शामिल हो गए हैं उस फहरिस्त में, तो हम आपको सबसे पहले वो नाम पढ़कर सुना देना चाहते हैं। और 5 बजे से ये नाम हमारे साथ हैं, बराबर हमें मैसेजेस कर रहे हैं और जैसी हमारी बात हो पा रही है, जैसा हम जिनको जितना रिप्लाई कर पा रहे हैं वो कर भी रहे हैं हम। तो हमारे पास विक्रम माटवले साहब का मैसेज आ गया है और महाराज कीर्तनपुरी जी का मैसेज आ गया है, विजेंद्र जी का हमारे पास मैसेज आ गया है, आकांक्षा जी का मैसेज है, हितेंद्र जी का मैसेज है, दीपा बालकर जी का मैसेज है, संजय पाटिल जी का, प्रणव शिंदे जी का, संजय दर्शन जी, प्रमोद चंचोलकर जी, वैदेही जी, अजय साखरे जी, मेहर अरोड़ा जी, दिग्दर्शन और कविता जी, बाबा जी और पंकज मोहन जी, राकेश माथुर साहब, फिरोज सिगानपोरिया साहब, अंकित जी, राजेंद्र परमार साहब, शुभदा जी, ये सारे मैसेजेस हम तक पहुंच गए। और भी कुछ नाम हैं, हम उन पर आएंगे जैसे जैसे उनके मैसेजेस हमको ताज़ा होते रहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, एक हमारे पास लंबा सा मैसेज आया है प्रणव शिंदे जी का। आप फरमाते हैं कुछ, आपने किसी को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि व्यक्त की है, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अगर हम सही से पढ़ पाए तो, क्योंकि आपने कविता के स्वरूप में उस बात को लिखा है। तो आप फरमाते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर जिसने चाहत की नई कहानी लिखी, हर दिल को छुए जाए ऐसी एक सयानी लिखी, सावन बनकर जो बरसे थे बॉलीवुड के आंगन में, उन्होंने जज्बातों की अपनी एक सुहानी जुबानी लिखी, सदाबहार गीतों और फिल्मों के नाम सौतन की कोशिश हो या सनम बेवफा का फसाना, उनकी बनाई हर फिल्म का दीवाना था जमाना, सिर्फ निर्देशक नहीं वो दिलों के नब्ज शनास थे। नाइस वर्ड, मुश्किल है सावन साहब जैसा दूसरा नगीना पाना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपने सावन कुमार टाक साहब को स्मृति दिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो हमारी तरफ से भी ढेर सारी श्रद्धांजलि, सादर नमन। और उनकी फिल्मों का जिक्र करते हुए आपने उसी फिल्म से टाइटल ट्रैक की फरमाइश की है, तो हम इसी प्रोग्राम के इब्तिदा इस आपके गाने के साथ करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपने जिस अंदाज में इतना खूबसूरत सा मैसेज लिखा है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप लिखते रहें, करते रहें। दरअसल ये एक तरीके से स्क्रिप्टिंग हो जाती है हमारे प्रोग्राम की, तो कुछ और लिखने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा लिखें जो थोड़ा सा क्रिएटिव हो और जो दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगे। तो बहुत शुक्रिया। इसमें एक लफ्ज़, हाँ हम बता दें कि जज्बातों एक गलत लफ्ज़ है, जज्बात अपने आप में प्लूरल नंबर है, तो आप जज्बात भी लिखेंगे, जज्बा सिंगुलर नंबर है और जज्बातों गलत हो जाता है, जज्बा ठीक बात होगी। और एक लफ्ज आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, नब्ज शनास, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आपके गाने के साथ इब्तिदा करते हैं, ये मोहब्बतों भरा साथ यूं ही बना रखिए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई, अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ।

7:20 का वक्त हमारे पास और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे पास एक नंबर से भी मैसेज आया है, ये जो नाम नहीं लिखा हुआ है, जी हाँ नाम हमें मिल गया है, हमें गुड इवनिंग भेज रहे हैं शैलेश जी, विक्रम जी, चेतन जी, तीन लोगों का नाम लिखा हुआ है। आप मुंबई अंधेरी से हमें मैसेज भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज भेजने के लिए। हमने आपका मैसेज देख लिया है और हम आपका गाना प्ले करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हमारे पास इसी के साथ कुंदन महतो जी का और राजेश लड्ढा जी का मैसेज आ गया है और आप बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश कर रहे हैं हमें, ज़रूर हम उसको पूरी कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और इसी दरमियान हमारे पास एक फ़ोन कॉल भी आया विजेंद्र जी का और उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की कि उनका गाना पिछले 3 दिनों से प्ले नहीं हो सका। तो विजेंद्र जी, हम आपको फिर से कहेंगे आप अपनी फरमाइश पर थोड़ा सा और ध्यान दें। आपका गाना आज भी हमें कुछ, या तो आपने टाइटल गलत लिखा है या फिल्म का नाम गलत है, उस नाम से उस फिल्म का गाना कोई मैच होता हुआ मिल नहीं रहा है मुझे, तो आज के लिए हम माजरत चाहेंगे आपसे। अगर आप दोबारा से हमें कोई दूसरा गाना सुनना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें। फिलहाल हम चलते हैं अजय साकरे जी की फरमाइश की ओर और बिल्कुल मुख्तलिफ मूड का आपको गाना सुनवाते हैं। अभी आपने सावन पर इतना खूबसूरत सा गाना सुना और सावन चल भी रहा है, सावन का आखिरी सोमवार मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया कल से, तो सावन का आखिरी सोमवार भी कल रहा और अब आपको बिल्कुल अलग अंदाज का, अलग मूड का गाना सुनवाते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं।

हाँ, हमारे पास जो पिछले नाम की हम बात कर रहे थे, राजेश जी का मैसेज आया हमारे पास और हाथ जोड़ते हुए नमस्ते भी आ गया है। और उनका गाना जो एक बहुत ही फ्रेश सा, मतलब है तो बहुत पुराना सा, लेकिन हमने बहुत दिन से नहीं सुना और हमारा भी ये पसंदीदा गाना है। थोड़ा सा अवधि लैंग्वेज है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का पसंदीदा होगा, भले वो शायद उस लैंग्वेज से वाकिफियत ना रखते हों, फिर भी उस गाने को वो पसंद करेंगे और शायद उनके दिल में उतरेगा। तो ये गाना है फ्रॉम द फिल्म नदिया के पार, सुनिए और लुत्फ लीजिए।

ज्यादा बात न करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे अगली फरमाइश जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो विक्रम जी की फरमाइश है और बहुत ही खूबसूरत सा वो गाना है, तो आप सुनिए और लुत्फ लीजिए और सुंदर 107.1 FM रेनबो मुंबई।

जी, हमने सोचा BGM हटाकर यानी बैकग्राउंड म्यूजिक हटाकर डायरेक्ट गाने से शुरुआत की जाए, और उस जिस शख्स का गाना प्ले हो रहा है उसे अंदाज़ा भी लग जाएगा और वो मन ही मन खुश भी हो रहा होगा। अब जब उसका नाम हम लेंगे तो वो शायद और खुश हो सकता है। तो इस गाने की फरमाइश हमको भेजी है आकांक्षा जी ने, और सुनते हैं बस और क्या कहें। हमारे पास हालांकि और भी मैसेजेस आ गए हैं, जब तक लिरिक्स नहीं आ रहे हैं गानों के तब तक हम बोल लेते हैं। तो हमारे पास एक मैसेज आने वाले शो के लिए शायद आ गया है। ओके, नहीं, आप शायद पूछ रहे हैं इज माई सॉन्ग। ओके, तो 8-10 तो हम नहीं रहने वाले हैं, यानी आने वाले शो के लिए मैसेज है। और हमारे पास चेतन कुमार जी का मैसेज आ गया है, और वो किसी भी गीत में नाम शामिल करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हमने शामिल कर लिया, इसी गीत में शामिल हो जाए आपका नाम। और भी बहुत लंबे लंबे मैसेजेस हैं, चलिए अब गाने का लुत्फ लेते हैं।

जी बहुत सारे मैसेजेस के बीच भी हमारे पास राकेश माथुर जी का मैसेज आ गया है, और हम आपको बता दें कि आपका गाना हमने क्यों करके रख लिया है, लेकिन आपका वो गाना हमने क्यों किया है जो इस प्रोग्राम को अंजाम पे पहुंचाने के साथ ही अच्छा लगेगा, और आपका गाना ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे, हमें अच्छा नहीं लगता है। खैर, हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज आया है ओमकार खटकर साहब का, और उनका गाना हमने क्यों करके रख लिया है, और उन्होंने जिस गाने की फरमाइश हमें भेजी है वो गाना कहता है कि ये रात जरा थमके गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नज़र। तो अगर आप अपने चांद का जिक्र भी कर देते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन हमने आपका गाना क्यों कर लिया है वो आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेताब है। आप सुनते रहिए और ये मोहब्बत तो मेरा साथ यूँ ही बना रखिए।

7:50 का वक्त और वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता हुआ और हमारे पास प्रदीप अनंत कृष्ण जी का मैसेज आ गया है और बहुत सारी बातें और बहुत सारे गाने और बहुत सारी तारीफें भी उन्होंने लिखी हैं, उसका शुक्रिया। और आपने बहुत खूबसूरत से गाने की फरमाइश भेजी है जो हमारा भी पसंदीदा गाना है, तो बगैर देरी हम आपको उस गाने से जोड़ते हैं। आप सुनिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

7:55 का मिनट का वक्त और ये वक्त हमारा विदा लेने का है यहाँ से, और फिर किसी रोज़ आपसे मुलाकात होगी। एक्चुअली आपको बता दें कि एक तवील अरसे बाद अब आपसे मुलाकात होगी, यानी काफ़ी दिन बाद मुलाकात होगी, अभी से हम आपको बता देते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे पास जिन तमाम ख़वातीन और हज़रात का मैसेज आया उनके नामों से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। वो नाम एक लंबी फहरिस्त है उसकी, तो फिरोज जी का मैसेज आया, पंकज जी का मैसेज आया, प्रकाश जी का मैसेज आया, शुभदा जी का मैसेज आया, राकेश माथुर जी का मैसेज आया, और हमारे पास ममता जायसवाल जी का मैसेज आया, राजेंद्र परमार जी का मैसेज आया, और वैदेही जी का मैसेज आया, संजय दर्शन जी का मैसेज आया, आकांक्षा जी का मैसेज आया, और काफ़ी कुछ लोगों ने तारीफ़ें लिखी हैं, तो उसके लिए हम बस शुक्रिया ही कह सकते हैं। और शुक्रिया लफ्ज़ छोटा पड़ेगा, लेकिन क्या करें, अभी फ़िलहाल इसी लफ्ज़ से काम चला सकते हैं। लेकिन आप जब ऐसा लिखते हैं तो हमारे दिल में आपके इज्जत और बढ़ जाती है, और हम और ध्यान से आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, ये पक्की बात है। और हमारे पास जो और नाम है वो प्रणव शिंदे जी हैं, ओमकार काटकर जी हैं, और चेतन कुमार जी हैं, अतेंद्र जी हैं, राजेश जी हैं, प्रमोद जी हैं, विजेंद्र जी हैं, राजू जी हैं, प्रदीप जी हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, ये दूसरे प्रदीप हैं, और अश्विन पाटिल जी ने मैसेज किया हमारे पास, मुकेश कश्यप जी, शंकराचार्य जी ने, महेश महाराज कीर्तनपुरी जी ने, विक्रम माठवली जी ने, हितेंद्र दास जी ने, दीपा पालकर जी, संजय पाटिल जी, अजय साखरे जी, मेहर अरोड़ा जी, दिग्दर्शन और कविता जी, बाबा जी, अंकित जी, निशा जी, मंगेश जी, और रामदास जी, सुनील जी, सबका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको हम छोड़ के जा रहे हैं राकेश माथुर जी के एक खूबसूरत से गाने के साथ, जो गाना क्या कह रहा है, मेरी फीलिंग्स बयां कर रहा है कि आपको छोड़ के जाने का वक्त मन नहीं है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, और शायद आप भी अपने दिल में मेरे लिए यही कह रहे होंगे क्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा, दुनिया के सबसे

0: बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: यूपीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है। और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया, जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के

0: रूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए डीआरडीओ के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय एमएसएमई और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
3: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत की लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे

0: ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। UPI का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।

सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 11:09 और हम आ पहुँचे हैं गज़लों की गलियों में आकाशवाणी के FM रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी, प्रोग्राम रंग महफिल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

और ये गजल उनके लिए जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए अपने होश को बेहोश हो जाने दिया। एफएम रेंडो पर आप सुन रहे हैं गजलों का।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

चली दौर तो चलता रहेगा, लेकिन अब समय मुझे वो दौर दिखा रही है जब मुझे आपसे लेनी होगी इजाज़त। पर आपको रेनबो से जाने की कहीं इजाज़त नहीं है, क्योंकि खूबसूरत गानों का दौर अभी जारी है। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर, मुझसे आपकी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी कभी बात। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की कभी कभी बेसुरी हो जाने वाली धुनों पर। प्रगति तिवारी की तरफ से बाय बाय।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर्स से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों समय हो रहा है रात्रि के 12:02:35 और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आवर शो। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। ये कुछ खूबसूरत से गीत आप सभी श्रोताओं के लिए है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आय हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी।

साथियों, आशा है ये गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। कार्यक्रम जीरो आर शो अब यहीं संपन्न होता है। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हेमा मेरा आपके साथ होंगी।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। दिल्ली में कल जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने कार्यशाला को संबोधित किया। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। और अंत में कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती
2: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि सत्र की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने कार्यशाला को संबोधित किया। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: जी हमारे साथ ही सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:10 और लीजिए साथियों अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ प्यारे से गीत जो आज भी हर दिल पर राज कर रहे हैं, तो आनंद लीजिए इन गीतों का नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक में। मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से

दुनिया के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

श्रोताओं, आशा है आपको ये गीत ज़रूर पसंद आए होंगे। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भुलाए ना बने अब यहीं समाप्त होता है। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, 3 बजे हिमा मेरा आपके लिए लेकर आएंगी समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी

रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने कार्यशाला को संबोधित किया। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। और अंत में खेल जगत में, कोलंबो क्रिकेट स्टेट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: si Terry बोली
1: हाय
0: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि सत्र की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति

पत्र सौंपेगी, जिसके तहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद ए मिलादुन्नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना। और अब खेल समाचार। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय आपको बताए देते हैं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 4:03:42 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सारेगामा। तो सारेगामा कार्यक्रम शुरू करते हैं मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। और कैसे हैं आप? तो लीजिए, आनंद लीजिए इन खूबसूरत से गीतों का।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से
2: कहानी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ साथियों, जिंदगी नाम है जिंदा दिली से जीने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे सरेगामा। इसके साथ ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपके साथ होंगी 5 बजे हेमा मेहरा।

0: कहेगी।
1: काम क्रोध विंतु तावला,
0: अरे अरे
1: तम घाम अंगाशी आला
0: महाराज,
1: त्याने माझा प्राण चालिला।
0: अरे
1: विंतु तावला
0: महाराज,
1: अरे विंतु तावला
0: महाराज,
1: गा गा गा गा गा गा गा।